मैनू जानी ना तिला भौकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पखियां।

तेरा हुण तख्त हिला देना जेने तू तख्त ते चढ़ बैठे ओ कुरना भी लबांगे जिस दे

0: हारी गबरुआ हिम्मत ना हारी बेलोका
1: सिंह दी रचना जिहड़ी कि जोगिंदर पाल मल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साडे एक शायर ने उहनां दी धी है सिमी सोतरा जी ओह दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी हुई एक जिहड़ी रचना लै के हाजिर हो रहे ने। सिमी सोतरा जी दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। सिमी सोतरा जी जी आयां
2: लेके असी दिल विच आए आ जुनून नी रद्द करवाने तेरे काले एक कानून नी लेके असी दिल

0: खुफिया खुफिया खुफिया खुफिया खुफिया रे पोटिया आई नंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। खुफिया रे पोटिया आई नंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। चंदरीए कड़ी सानू दिल चो, लिया किसी होरी नू वसानी। खुफिया रे पोटी आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। खुफिया रे पोटी आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी।
1: वाह
0: कसमा तू खादिया सी लखनी, एक भी ना तेरे कोलों फुकीनी। वेख के तू ओथे मैल मारिया, भुल गई अज साडी चुकीनी। कसमा तू खादिया सी लखनी, एक भी ना तेरे कोलों पुगनी। देख के तू ओथे मैले मारिया, भुल गई अज साडी चुकीनी। ओथे दे व्यापारिया ने मोलिया, तेनू चांदी दियां छिलड़ा वखानी। चंदरीए कड़ी सानू दिल चो, लिया किसे होरे नू वसानी। खुफिया रे पोटिया आई नंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्याहानी। खुफिया रे पोटिया आई नंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्याहानी। शहर दे बहाने डुब जानिए, साडे कोलों मारगी उड़ारियां।
1: वाह जी
0: दिल दिया ठाडियां तू सदरां, पैरां थले लैके नी लताड़ियां। खैर दे बहाने डुब जानिए, साडे कोलों मार गई उड़ारियां। दिल दिया साडियां तू सदरां, पैरां थले लैके नी लताड़ियां। पैसियां दी गल सी जे भुखिए, तेरे कदमां च दिंदा वै निशानी। चंदरीए कड़े सानू दिल चो, लिया किसे होरे नू वसानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। आऊगा नी लाली तेनू याद नी, जदों नैना रूप नाए रंगनी। मार के उड़ारी उड़ जाऊगी, सदा ना जवानी रहनी संगनी। आऊगा नी लाली तेनू याद नी, जदों रहना रूप नाए रंगनी। मार के उड़ारी उड़ जाऊगी, सदा ना जवानी रहनी संगनी।

0: जिन्ने टुकड़े होने दिल देने, हर टुकड़े ते तेरा ना होने। जिन्ने टुकड़े होने दिल देने, हर टुकड़े ते तेरा ना होने।
1: वाह जी,

तू अपने बेले आबाद रखी, जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होण तो पहला मैनू देके थोड़ा जहर जावी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा। मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुण राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा। मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुण राए थोड़ा। मेरे कुप हो नेरे नू

कभी है सवरना, कभी है बिखरना, कभी तो है मिलना, कभी है बिछड़ना। रिश्ते हैं क्या अजनबी,

है जीवन का, तो यही फसाना है किस्मत का, तो यही फसाना है। हंसना है कभी रोना है, खूना है कभी पाना है,

गीत को स्वामी जी ने इस गीत तो बाद एक गीत असी जोगिंदर पाल मल जी तो होर सुनना चाहांगे जेड़ा के रंजीत कौर स्वामी जी का ही लिखा होया है। ते ए साडे अज दे प्रोग्राम गौंदी शाम दा आखरी गीत होएगा। ते इस जेड़ा हुण गीत लेके हाजिर हो रहे ने जोगिंदर पाल मल जी, ए है मेला चार दिनां दा, यानी कि जिंदगानी जिहड़ी आ सिर्फ चार दिनां दा मेला है। इस तों बाद ए जिंदगानी नहीं रहनी। इस जिंदगानी नूं जिहड़ा चार दिनां दा मेला किवें बतीत करना चाहिदा आ, इस गल्लां नूं लैके जिहड़ा आ रणजीत कौर साबी जी ने लिखिया है ते आवाज दित्ती आ जोगिंदर पाल मल जी ने। जोगिंदर पाल मल जी, तुहाडा एक बार फिर दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है। गौंदी शाम दे स्रोते थोड़ी बेसब्री नाल अड़ीक कर रहे ने, आओ ते उन्हां दा जिहड़ा आ मन परचावा करो। जोगिंदर पाल मल जी।

जी नूं प्यार भरी सत श्रीकाल और सारे श्रोतियां नूं मेरी प्यार भरी सत श्रीकाल। मेरी कविता का नाम है खेड़िया गुलाब साडा पत्ती पत्ती हो गया। खेड़िया गुलाब साडा पत्ती पत्ती हो गया, हसदा पंजाब साडा रोलियां च खो गया। खेड़िया गुलाब साडा पत्ती पत्ती हो गया, हसदा पंजाब साडा रोलियां च खो गया।

ज्ञान दी जोत जगावण दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगण नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच लई अड़ना सिखो न अंदर वह के जरना चंगा, नाल अणख दे जीवन दे लई न इन किसे दी परना चंगा। रल मिल के रहना सबने दुख सुख बिच

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालों चुप ताएं अपनाउणा चंगा। बड़ियां दा सत्कार है करना,

काम आना किसी के है एक बंदगी, एक बार ही मिलती है ये जिंदगी। काम आना किसी के है एक बंदगी, रोने वालों को जो

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

दिलिये खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार। असी बाल अथरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता। असी बाल अथरे हां साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता। सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था। सदके मुड